0: sacrifice.
1: जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: This is Inspire on 105.1 FM. I have

0: is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Havis. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area, drink some strong coffee, and take a quick nap while the caffeine kicks in.
2: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
3: Aye, cheers.
1: Think. Don't drive tired.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
5: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
6: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
7: Insanon ke baare mein 100% nahi jaan sakta. To aap agar achhe aadmi hai na, ya darmiyane se insaan hai aap, na achhe hai na bure hai, darmiyane se aadmi hai, aur aap एक सोचते हैं कि एक आदमी ये नॉर्मल चीज़ है इससे नीचे कोई इंसान नहीं जाएगा ठीक है इससे नीचे ये इंसान नहीं जा सकता होगा या ये लेडी इससे नीचे नहीं जाएंगी वरना वो नीच हो जाएगा क्योंकि आप वो चीज़ नहीं सोच सकते तो इसलिए आप वो लोगों के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बाय द वे वो लोग जब आप उनसे डील करेंगे तो अगर वो उनसे बहुत नीचे हैं बहुत लोएस्ट मेंटल कैलिबर के हैं या बहुत घटिया नेचर के इंसान हैं या वो बहुत मैनिपुलेटिव हैं तो ये अगर आपके नेचर में मैनिपुलेटिव नहीं है तो आप ये नहीं फिगर आउट कर सकते वो जब आपके साथ करेंगे तो पता चलेगा इंसान जो है ना उसको एक बात याद रखनी है रब ने जब भी आपको कोई एबिलिटी देता है तो उसको अपने बैलेंस में रखना होता है तो इंसान को कभी भी किसी से बदगुमान नहीं होना चाहिए ठीक है ये सोचना किसी को देखते ही कि ये मेरे साथ बुरा करेगा ये नहीं करना किसी इंसान ने भी ये अलाउड नहीं है कानून में दूसरी तरफ खुशगुमान होना इतना खुशगुमान होना कि ये आदमी मेरी ज़िंदगी बदल के रख देगा ये बेवकूफ़ी भी नहीं करनी होती तो गुमान आपने बेसिकली कोशिश ये करना है कि गुमान आप रखें रियलिस्टिक ठीक इन दोनों के बीच में रखें और जब आप बीच में गुमान रखेंगे ना बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैजरेट करें कि बुरा आदमी है ना ये कहें कि बहुत अच्छा है बीच में जब आप रखेंगे और उसके बाद क्या होगा ये आप अच्छे तरीके से इनके साथ डील कर लेंगे और उसके बाद वो लोग जो कहते हैं या जो उनके एक्शंस होते हैं वो डिसाइड करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली कि वो घटिया हैं या अच्छे हैं तो आप जैसे जैसे वो अच्छे होते जाएंगे आप उनके साथ वैसे वैसे डील करते जाएंगे जैसे जैसे वो नीचे की तरफ घटिया होते जाएंगे आप वैसे वैसे उनके साथ सख्ती करते जाएंगे ये तरीका है लोगों के साथ डील करने का जो मैं अप्लाई करता हूँ पिछले कोई 4-5 साल से जो मैंने डिवाइस किया हुआ है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते ना किसी को इस तरह आदमी नीच सोचता है ना किसी से आपका कोई नुकसान इस तरह आप सोचते हैं ना आप किसी से फ़ायदा चाहते हैं आप सिर्फ इंसानों से इंसानों की तरह डील करना चाहते हैं भलाई के तौर पे उसके बाद जब भलाई होती है तो इट ट्रेवल्स बोथ वेज दोनों का उसमें फ़ायदा हो जाता है तो ये तरीका है चीज़ को सामने रखने का इंसानों से डील करने का आई होप इससे आसानी हुई समझने में
8: बिल्कुल आजाद यानी आप बैलेंस से शुरू करते हैं और फिर वो खुद ही सॉर्ट आउट हो जाता है
7: आप चीनी जब डालते हैं ना किसी चीज़ में आपको नहीं पता ये चीनी किस किस्म है नमक कभी कभी बड़े तेज़ भी होते हैं तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि खोल के हाथ बेवकूफ़ों की तरह नमक डाल देना या बिल्कुल भी ना डालना अच्छा खासा खाने के बाद कड़वा हो जाता है खाना तो आपने थोड़ा सा नमक पहले डालें उसके बाद उसको चखें फिर उसके बाद खाना वाना जब आप आधे में पहुँचते आगे तो थोड़ा सा और डाल के चेक कर लें अगर कम लग रहा है आपको, तो ऐसी कोई भी टेक्निकल चीज़ जो कि सब का सब बदल सकती है उसको देख कर सोच कर साथ साथ आप डालेंगे तो चांसेस ये हैं कि आप खाना कभी भी बहुत बुरा नहीं कर पाएंगे, तो ज़िंदगी भी आप कभी भी बहुत बुरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंसान को रब ने बैलेंस में रखने का और कफायत शहारी से ले के म्याना रवि के बारे में ये दरमियाना रास्ता इसलिए रब ने बताया है कि इसमें आपकी छूट बहुत होती है एक, और दूसरा आपका नुकसान बैलेंस में रहेगा और दूसरा आपका जो फ़ायदा है वो भी बैलेंस में रहेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रस्ट डेवलप होगा, जब इंटेग्रिटी टेस्टेड हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर आप उन लोगों के साथ और बेहतर डील कर लें या बड़ी डील कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा छोटी डील में, ये मेरा पक्का उसूल है, जो बंदा $200-400 में बेईमान है उसके साथ $4,000-$10,000 या $1,00,000-$2,00,000 का सौदा करने वाला बंदा बेवकूफ़ होता है, वो हमेशा नुकसान होगा, क्योंकि नेचर नहीं बदलती है। जिसको पैसे से प्यार होता है और जो पैसा अपने पास रखना चाहता है, शेयर नहीं करना चाहता, उस बंदे के साथ आप कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप मारे जाएंगे, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, बहन भाई क्यों ना हो। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, फिर गिला शिकवा रोना रोना ना खेला करें। और अज़मत का मीनार अगर आपने बनना है तो फिर और बात है, जो कि बहुत तकलीफ़ में रहता है इंसान, अगर अज़मत का मीनार है तो ठीक है, मीनार मीनार के तौर पे सीमेंट से, पत्थर से, ईंट से बना हुआ होना चाहिए, जो कि किसी की यादगार के तौर पे इस्तेमाल होता है। इंसान में, फरिश्तों में, इंसान में और जिनों में, और इंसान में और मीनार में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंसान को इंसान का बच्चा बन के इंसानों की तरह रहना चाहिए। इंसान जिसको सर्दी लगती है, जिसको गर्मी लगती है, जिसको तकलीफ़ होती है, जो बीमार होता है, जो कभी कमज़ोर हो जाता है, जो कभी नाराज़ हो जाता है, कभी खुश रहता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर इंसान इंसान है तो वो बैलेंस में रखने की कोशिश करता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पर काम करके, इससे रिज़ल्ट बेहतर होते जाएंगे। कितना अच्छा क्लिप रिकॉर्ड कराया आपने, जो दाढ़ी वाले बाबे ने गलत दिन रिकॉर्ड किया और ये कोई नहीं देख पाएगा लेकिन जो लोग रेडियो सुनते हैं वो सुनते जरूर रहेंगे और सुन पाएंगे
8: इंशाल्लाह ताला। आजाद वाला, आजाद वाला, जब दो लोगों के दरमियान आपके ख्याल
7: सारे अच्छे पॉइंट्स आपने आज ही पूछने हैं
8: क्या चीज
7: सारे अच्छे पॉइंट्स आपने आज ही पूछने हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं करा पा रहा
8: कोई बात नहीं, आजाद वाला फिर पूछ लेंगे।
7: ये आप नहीं पूछेंगे फिर, मुझे पता है ना, क्योंकि फौरन नहीं पूछती आप, और जब आप पूछती हैं तो पैकेट उसी वक्त आता है, तो जब पैकेट आता है गरम-गरम, पैकेट गरम-गरम डबल रोटी खाई है आपने कभी?
8: That's my favorite. Oh my God, उसकी स्मेल, उसका मजा ही अलग होता है।
7: अगर उसके वीट की जो असल स्मेल है ना, उसको आप हाइब्रिडाइज ना करें, उसको आप ब्लीच ना करें, उसके साथ इंसानी कमीनापन ना करें अगर आप, तो वो कोई भी कमीनापन आप ना करें फूड के साथ, तो जो असल तंदूर की रोटी है ना, जिसके साथ वो जो जिसका आप फाइबर भी ना निकालें, ठीक है, और जिसमें हल्का सा खमीर भी हो, ठीक, जिसको सावड़ो आजकल आप कहते हैं, हल्का सा खांजी। देखिए इंसान कितना बदबخت, जब खांजी बचपन में खमीरी रोटी खाते थे, हम कहते थे खट्टी है, खुशबू आ रही है, नहीं खाना हमको, आज हम ढूंढ ढूंढ के महंगी महंगी सावड़ोज खा रहे हैं वही चीज़ आप वापस चले जाते हैं। इसीलिए मैं खांजी की, इसीलिए मैं हिस्ट्री की, इसीलिए मैं रब की चीज़ें वक्त से पहले जाकर फिगर आउट करके अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि विजडम एक्चुअली इन्हीं चीज़ों में से है, और इन्हीं चीज़ों की तरफ वापस, वही हल्दी वापस आ गई है, ठीक है जी, वही ज़ीरा, वही सौंफ, वही चीज़ें जो बचपन में काली ज़ीरी जिससे हम भागते थे, वही हैंग, ना लगे हैंग और ना फटकड़ी और रंग भी चौखा है, वही फटकड़ी अलम के बहुत ज़बरदस्त तौर पर यूज़ हो सकती है, आपको पता है ना फटकड़ी अलम जो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम एंटी प्रेस्पेरेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, स्किन के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, और नेचुरल है, अरब यूज करते हैं इसको
8: ज्यादा, बहुत लोग हज जब जाते हैं हज में बहुत यूज करते हैं, या वहाँ पे क्योंकि वो खुशबू नहीं लगाते तो ये फटकड़ी यूज करते
7: हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो करना चाहिए।
8: तो असादला, आपके ख्याल से दो लोगों के दरमियान मोहब्बत बैलेंस्ड होती है या नहीं, हमेशा एक बंदा ज्यादा दे रहा होता है?
7: हमेशा एक बंदा ज्यादा दे रहा होता है। इंसान जो होता है, इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करने लगूंगा घंटे में बताऊंगा। कभी भी रेसिप्रोकेशन हो रही होती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रही होती है, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी को मैं अपने सामने रख के देखूं और लोगों के जितने हज़ारों लोगों से मैं मिला हूं, इससे साबित किया जा सकता है कि एक आदमी हमेशा ज़्यादा कर रहा होता है और दूसरा कम, लेकिन रेसिप्रोकेशन चल रही होती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा होता है, इसको रोकें अगर आप ना, अगर देने वाला किसी को मिल जाए ना, कोई गिवर मिल जाए, तो अगला बंदा अगर टेकर भी है तो वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अगर सही रखेगा तो सारी ज़िंदगी भी टेक करता रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंसानों को ना बहुत लेवरेज देना होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के लिए कि इंसान इंसान होते हैं, वो किसी प्री जेनेटिक डिस्पोजिशन से पैदा हुए होते हैं, उनके एक बचपन में जो उनके साथ हुआ था उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी बनती है, उनके एम्बिशंस को देख के, उनकी ज़िंदगी को सामने रख के। अब वो शादियाँ जब आपस में करते हैं, पार्टनर्स हैं अगर आपस में, अब वो उन्होंने मोहब्बत की शादी की है, अरेंज मैरिज है, किस सिचुएशन से, किस एनवायरनमेंट से वो निकल के आए, हर आदमी शादी को चलाने की कोशिश कर रहा होता है। इस चलाने के अंदर आप परफेक्शन ढूंढने के बजाय, अगर कोई गिवर है तो आप कमीनापन ना करें उसके साथ, अगर कोई टेकर है तो दूसरा गिवर भी उसको, अगर आप 100% भी नहीं देंगे लेकिन जो मिला है उसको ही रिसाइकिल करते रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बड़े आराम से ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देना शुरू कर दें, 2%, वो 2% जो गिवर को चाहिए, गिवर लेडी है या जेंटलमैन है, अगर उसको चाहिए वो 2% आप दे दें, आपको 200% मिलना शुरू हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस शुक्रगुजारी का है। मर्दों को पर्पस चाहिए होता है, उनको मसला दे दें और उसका हल उनसे लेना होता है, उन्होंने उसको हल करना होता है, वरना वो अपने आप को मर्द महसूस नहीं करते। औरत का मसला क्या है, वो सिर्फ चाहती है कि भाई मेरी सिर्फ मसला सुन लें। अबे मसला सुनना नहीं होता सिर्फ, एक्चुअल में वो भी ये चाहती हैं कि मसले का हल निकल आए, लेकिन वो चाहती हैं कि सिर्फ सुन लिया जाए। सुन क्यों लिया जाए, आप बराबर के हिस्सेदार हैं एक रिश्ते में, आपको एक मसला, एक तकलीफ है, उसको सुनकर समझकर म्यूचुअली दूर करना है। ये जो कहते रहती है ना लेडीज कि भाई मुझे सिर्फ सुन लें, क्यों सिर्फ सुन लें भाई, आपको जानवर हो गया आपको सिर्फ सुन लें। इंसान को सुनने का मतलब है, समझिए ना प्रोसेस, क्यों लोग सुनते हैं, एक बोलता है दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है आप सुनते हैं, मसला है हल करना। तो ये जो कहते रहते हैं कि जी सिर्फ सुनना होता है, ये आपको समझना है इस बात को कि ये मर्द और औरत में हमने खामखाई, किसी बंदे ने हमको ये बता दिया कि जी औरतें सिर्फ चाहती हैं उनको सुन ले, और मर्द जो है वो चाहते हैं जी मैं जब सुनूँ तो मैं उसको हल करूँ। अबे दोनों मिलकर इंसान के बच्चे बने, मर्द और औरत की इस स्टेरियोटाइपिंग से बाहर निकलें। दोनों इसलिए कम्युनिकेट करता है इंसान की चीज़ों की समझ आए, और अगर कोई मसला है तो उसका हल हो। सिर्फ सुन लेने से, आपको एक चीज़ तकलीफ दे रही है मेरी, मैं सुन लेता हूँ तो क्या आप ठीक हो जाएंगी, नहीं मैं फिर वो करूँगा फिर आपको तकलीफ होगी, तो आप मुझसे बात करेंगे कि मुझे ये चीज़ तकलीफ देती है तो मैं अपने आप में एडजस्टमेंट्स ला के उसको ठीक करूँगा, तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, दोबारा ये बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगली दफ़ा कोई और मसला होगा, स्कूल का मसला है, बच्चों का मसला है, फाइनेंसिस का मसला है, आपकी फैमिली का मसला है, मेरी फैमिली का मसला है, जो भी है आप बात करें, उस मसले को हल करें और आगे बढ़ें। स्टूपिड थोड़ी हैं हम इस दुनिया में, या हमने औरतों को इतना स्टीरियोटाइप किया हुआ है कि वो पागल हैं, या हमने मर्दों को इतना स्टूपिड किया हुआ है कि भाई मेन आर लाइक डॉग्स, ये स्टूपिड बातें जो हमने की हुई हैं, इस वजह से ना मर्द मर्द बन पा रहा है ना औरत औरत बन पा रही है। और वो मैं कितनी ही ब्रिलियंट ब्रेन्स लेडीज़ को जानता हूँ जो सब्जेक्ट्स में PhDs हैं, जो बिजनेस में काम करती हैं, फॉर्च्यून 500 में काम करती हैं, जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाती हैं, वो इतनी स्टूपिड बातें करती हैं क्योंकि उनको ये बातें किसी ने बता दी हैं। वो जितनी वो स्मार्ट हैं और जितने उनके बिजनेस में रिजल्ट्स हैं, वो उनकी लाइफ में नज़र ही नहीं आ रहा, ना वो सोचती हैं तो उसमें नज़र आ रहा है। तो दूसरी तरफ मर्द हैं, इतने ब्रिलियंट हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेशंस के अंदर हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लीड कर रहे हैं, और फिर वो मर्द होने के नाते इतनी स्टूपिड बातें करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके, कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये वही लोग हैं जो ये सारा कुछ करते हैं, क्योंकि इनको भी स्टीरियोटाइपिंग, नहीं भाई हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, मर्द किसने कहा है कि आपको ये चाहिए, आपने सुन लिया बस। तो आप दोनों, हम इंसान बनेंगे, इंसान कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन का कोई एंड रिजल्ट निकलता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। दो बंदे एक साथ अगर इंसान के अंदर, जैसे खान साहब और आज़ाद साहब, अगर यही कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, तो मैं पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए मैंने इनकी आपस में दोस्ती कराई, दोनों को एडजस्ट करवाया, एक इमोशन काबू में रखे, दूसरा लॉजिक काबू में रखे, साथ चलने की कोशिश करें। जब ये कंफर्टेबल हुआ आपस में तो मैं अपने साथ भी कंफर्टेबल हो गया, दुनिया के साथ भी कंफर्टेबल हो गया, रब के साथ जो मेरा रिश्ता है मैं उस पर भी कंफर्टेबल हो गया। जो मैं करता हूँ उसके बदले मुझे कुछ मिल जाता है, जो मैं नहीं कर पाता उसके बदले मुझे नहीं मिलता, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको पाने की। तो इंसान होने के नाते अगर मैं अपने साथ कंफर्टेबल हो गया हूँ तो दूसरे इंसान के साथ भी, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरे साथ फजूल बातें करता है या बार बार एक जैसी बात करता है या मैंने उसको छोड़ दिया सजा दिए बगैर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं जो मेरे साथ बिजनेस करता है, पार्टनरशिप करता है, उसमें वो अपना डील नहीं करता तो मैं उसके साथ प्रॉपर डील नहीं करता। ये और बात है कि मैं बहुत सारी लेवरेज देता हूँ उनको, ये भी सही सच बात है कि मुझे भी जैसा मैं हूँ बहुत सारी लेवरेज देते होंगे। तो ये सब मिलकर ऐसे ही चलता है और ये रिश्ते 30 साल से चल रहे हैं, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए जो लोग मुझे औरतें कहती हैं कि जी रिश्तों में लड़ाई होती है, मैं नहीं मानता। जो मर्द कहते हैं जी रिश्तों में तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई होती है, इसका मतलब है आप डफर हैं। तो इसका मतलब कहीं पर भी, क्योंकि मेरे 30 साल से कोई ना मर्दों के साथ कई लड़ाई हुई है ना किसी औरतों के साथ लड़ाई हुई है, और जिनके साथ लड़ाई कभी हुई है उनके साथ लंबे रिश्ते मेरे नहीं चले कभी भी। क्योंकि अगर इसका मतलब है कि नेचुरली चीज़ें एडजस्ट नहीं हुई या नेचुरली वो लोग इतने मैच्योर नहीं हैं कि इस पे काम करें और आगे बढ़ें। नाराज़गी और लड़ाई कभी होती भी है इन लोगों से तो उन्हीं बातों पे होती है जिससे हम पहले बात कर चुके हैं, और उसकी वजह से मैं सख्ती करता हूँ लोगों के ऊपर। नई मसला तो कोई ला ही नहीं रहा क्योंकि हम तो वेजिटेट कर रहे हैं, बढ़ तो रहे नहीं ज़हनी तौर पर। इस पूरी बात को जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई बात नहीं समझ आई होगी। आपका क्या ख्याल?
8: सही कह रहे हैं।
7: कहीं कोई चीज जो आपको नहीं समझ आई, आपको लगता है यार ये गलत है या बैलेंस से बाहर है?
8: नहीं।
7: कहीं आपको लगता है कि कोई जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं स्टेरियोटाइपिंग, और ये जो औरतों के मैगजीन होते हैं जिसमें अजीब अजीब बातें वो बताती रहती हैं, और वो मर्दों के जो स्टूपिड मैगजीन होते हैं जिसमें वो अजीब अजीब बातें, मर्द ऐसा होता है औरत ऐसी होती है, अरे भाई आप वो वाले मैगजीन में आने वाली औरत और मैगजीन में आने वाले मर्दों को ऐसे काबू करना है, औरतों को ऐसे काबू करना है, ये बेसिक बातों को, इससे ऊपर उठ जाते हैं इंसान जब वो साथ चलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हर आदमी हर मर्द एक जैसा नहीं होता, इन बातों को समझें। हर औरत भी एक जैसी नहीं होती, इन बातों को समझें। हर मर्द की वो नीड्स नहीं होती, हर औरत की वो नीड्स नहीं होती जो दूसरी लोग समझते हैं। मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि सब मुझे बताते हैं। जितने लोगों ने आज तक मुझे कहा औरत को तो ऐसे होता है, औरत तो ऐसी होनी चाहिए फलां, मैंने कहा नहीं, ये आप खुद आपने सोचा हुआ है, आपको किसी ने बताया हुआ है, आप खुद ऐसी हैं इसलिए आपको लगता है सब ऐसे होने चाहिए। मैं 900 और लोगों को जानता हूँ जो ऐसी बिल्कुल नहीं। फिर वो कहती हैं अच्छा ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। हाँ होता है, आपको नहीं पता तो इसका मतलब है आपने 900 और लोगों से बात नहीं की इसलिए आपको नहीं पता। मर्दों के बारे मर्द मुझे कहते हैं जी मर्द ऐसा होता है वैसा होता है, मर्द बीवी से ये चाहता है, मर्द रिलेशनशिप में नहीं चाहता, मैं कह नहीं, मर्द को बीच में से निकालो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा चाहते हो, 900 और मर्द ऐसे नहीं चाहते। स्टडीज़ ये बताती हैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये बताती है, दे आर टोटली डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। आपको क्यों नहीं पता? बिकॉज आपके पास वक्त ही नहीं है। आप अपनी ख्वाहिशात से बाहर निकलेंगे, आप अपनी लॉजिक और रीजनिंग को जब एक्टिवेट करेंगे, आप लोगों को गौर से देखेंगे कौन मर्द और कौन औरत कैसा है, वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को नहीं पसंद करते, वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, क्या वो बिल्कुल नहीं दे सकते या दे सकती, आप उस रास्ते पे चलेंगे क्यों, क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा बटन है जो आप दबाते हैं उससे वो बिलबिला उठता है या उठती हैं, आप ये हरकत दोबारा नहीं करेंगे या करेंगी, क्योंकि इसके बदले जो आपको मिलता है वही मिलेगा। सो जो कुछ भी आप तक नहीं पहुंच रहा, मर्द हैं या औरत, रिश्तों में हैं आप या किसी किस्म के भी आप मामला है आपका, आपके पास जो चीज़ें नहीं पहुंच रहा वो आपके ना जानने की वजह से नहीं पहुंच रहा, या ना डील्स कर सकने की वजह से, या किसी चीज़ पे रिजिड होने की वजह से पहुंच रहा है। अब ये बात तो फिर हम क्या करें, आप जो भी आपको चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एनवलप को पुश करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी मर्जी के लोगों से मिलना पड़ेगा, उसमें जो आपको चाहिए उस किस्म के लोग और उस किस्म की चीज़ें आपको 100% मिलेंगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन इसके लिए सब्र भी करना होता है, रास्ता भी देखना होता है, इमोशनल ड्रामे भी नहीं करने होते, और जिस किस्म की ज़िंदगी आप चाहते हैं। कोई बंदा है वो कहता है जी मैं शादी टाइप हूँ, लेकिन वो कहता है जी मैं कर नहीं सकता, तो वो बेवकूफ़ है। अगर वो शादी टाइप है तो उसको शादी करनी चाहिए, और जिस किस्म के इंसान से करना चाहता है वो उस किस्म के इंसान से करनी चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो क्या इस दुनिया में आप घास खा रहे हैं, या आप कहीं नहीं मिलते, या कोई जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है आपकी, कोई आप बाहर नहीं जाते, कोई आपके रिश्तेदार नहीं है, किसी بزنس میں کسی فورم پہ یا کسی جگہ کوئی جہاز میں آپ نے کبھی سفر نہیں کیا, کبھی آپ کو کوئی انسان نہیں ملا, اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے آپ سے باہر نکلیں, اپنا فیوریٹ ہونا کھیلنا بند کریں, آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے, لیکن اس کے لیے کچھ پرائس ہوگی جو آپ کو پے کرنی ہے. پرائس پے کیے بغیر آپ فائیو اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ بتائیں آپ.
8: نہیں.
7: پرائس پے کیے بغیر آپ دنیا کی فائنسٹ وائن پی سکتے ہیں؟
8: نہیں.
7: اب کئی لوگ وائن پینا ہی نہیں چاہتے یا ان کے لیے وائن ہے ہی نہیں, تو یہ اور بات ہے, لیکن کوئی بھی چیز فائنسٹ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے, مجھے زندگی میں جو چاہیے تھا میں آپ کو اپنی گارنٹی دیتا ہوں, رب بھی سن رہا ہے, ہم بھی سن رہے ہیں, سب کچھ ہے, مجھے جو کچھ اپنی زندگی میں چاہیے اور جس چیز کے لیے میں نے کوشش کی مجھے وہ 100% ملی. جو چیز اس وقت میرے پاس نہیں ہے میں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی, ایک دوسری ہاف ہارٹڈ کی ہوگی لیکن وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی. جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کے لیے میں نے کوشش کی, رب نے اس میں برکت پیدا کی اور میں اس سے بے انتہا خوش ہوں, اور میں کئی چیزوں کو بدلنا ہی نہیں چاہتا. میں بدلنا چاہوں گا ان چیزوں کو تو دیکھیں گے, لیکن یہ بات میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہوتی وہ چیز نہیں ہوتی. ڈم انسان کی اور عورت کی پہلی نشانی, دنیا میں محبت کوئی چیز نہیں ہے, دنیا میں محبت نہیں ہوتی, دنیا میں دوستی کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا, دنیا میں کوئی کسی انسان کے لیے کچھ نہیں کرتا, دنیا میں کوئی کسی کے لیے اپنا ایفرٹ ٹائم پیسہ یہ قربان نہیں کرتا, دنیا میں یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے, دنیا میں کوئی ہر کوئی سسٹم, یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنا دماغ بند کر لیے اور اب آپ آگے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ مینیفیسٹیشن کا آپ نے جڑ مار کے رکھ دی. اگر میں یہ ساری باتیں مانتا تو میری زندگی میں کبھی میریکلز نہیں ہوتے. میرے لیے لوگوں نے وہ کیا جو انہوں نے سگے ماں باپ کے لیے نہیں کیا, سگی اولاد کے لیے نہیں کیا, انہوں نے دوستی میں میرے لیے وہ کیا, صرف انسان دوست ہونے کے ناطے انہوں نے میرے لیے وہ کیا, میں کیسے مان جاؤں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایک وقت تک, جب تک میں سب کی طرح سوچتا تھا تو وہی وہ میرے ساتھ ہوتا تھا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے, اب میں سب کی طرح نہیں سوچتا تو میرے ساتھ وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, اور ان کے ساتھ صرف ہوتا ہے جو اس طرح سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس طرح جیتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. جو کچھ میں نے پایا میں نے اس کی پرائس پے کی, آگے بھی اگر میں زندہ رہا جو کچھ میں پاؤں گا مجھے اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی, یہ قانون قدرت ہے, دس از ہاؤ دا لا آف دا یونیورس آپریٹس. اگر میں اس کو نہیں ماننا چاہتا آپ کی مرضی ہے. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: कि लम आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम।
1: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Jo marzi aap karna chahte hain, jis tarah ki zindagi aap guzarna chahte hain, aapne mujhe hisab nahi dena. Aapne mere saath zindagi nahi guzarni, aapne apne saath zindagi guzarni. हमारा आज का साथ है, दो साल का, दस साल के बाद में नहीं होगा, जैसे मेरा कई और लोगों से नहीं रहा, स्कूल के मेरे फ्रेंड से नहीं रहा, कॉलेज के फ्रेंड से नहीं रहा, मेरे गांव से मेरा बहुत कम रहा, रिश्तेदारों में से बहुत कम के साथ रहा. तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जिस तरह की आप ज़िंदगी जीते हैं, जिस जगह आप रहते हैं उसके हिसाब से वही टाइम एंड एफर्ट है, 24 घंटे कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरह लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, फेड अवे हो जाते हैं. नॉर्मल बात है, इसमें जज्बाती ड्रामे करने की कोई बात नहीं. अगर हम एक रास्ते पर होंगे, एक तरह के हमारे काम होंगे, कोई चीज़ हम साथ मिलकर करते हैं तो हम साथ चलेंगे, वरना दुनिया हम साथ नहीं चलेंगे, और लोगों के साथ आप चलेंगे. इसमें इतना जज्बाती होने की और इतना ड्रामे करने की और इमोशनल ब्लैकमेल होने या करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यही होता है, यही होता आया है, आगे भी यही होगा. तो ये रियलिटीज़ है ज़िंदगी की, ये हमें आनी चाहिए. और अगर हमें नहीं पता तो आप जितनी मर्ज़ी तालीम हासिल कर लें, जितनी मर्ज़ी डिग्रीज़ बना लें, जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टीज़ बना लें, जितनी मर्ज़ी ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ बना लें, जितने मर्ज़ी बिजनेसेस कर लें, जितनी मर्ज़ी शादियां कर लें, जितने मर्ज़ी बच्चे कर लें, जितनी मर्ज़ी दोस्तियां कर लें, जितने मर्ज़ी आप लोगों को अपने पार्टनरशिप बना लें, आप हमेशा दुखी रहेंगे और तकलीफ़ में रहेंगे. आपको इससे कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि जो निकाल सकता था उसने आपको इसमें से नहीं निकाला, और वो आप खुद हैं, और इसका रब से कोई ताल्लुक नहीं. वो सब कुछ देकर आपको इंतज़ार किया बैठा है कि अब आप क्या करते. इतनी सी सारी बात है, जिसको नहीं समझ, जिसको समझ आ गई, ज़िंदगी बन जाती है, आखिरत भी बन जाती है, क्लियर हो जाते हैं कम से कम आपके आप हैं किस रास्ते पे. और जैसे ही बुरे बंदे को ये क्लियर हो जाएगा ना कि वो बुरा है, वो हिपोक्रेट नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वो वहाँ से अच्छाई की तरफ चल पड़ेगा. और वो बंदा जिसकी सारी ज़िंदगी बुराई में गुजरी है, मैं हूँ, आप हूँ, हम जितने लोग हैं, जब वो अच्छाई की तरफ सोचने लगता है, अच्छाई करने लगता है, तो उसकी वो उस बंदे पर हज़ार दफ़ा ज़्यादा भारी है जिसकी सारी ज़िंदगी अच्छाई में गुजरी, लेकिन उसको अच्छाई बुराई का फ़र्क ही नहीं पता था, और आखिर में वो बुराई वालों में से निकल आया और बुरे कामों में पड़ गया. इसीलिए डरने घबराने की ज़रूरत ही कोई नहीं. ये जितनी कहानियाँ आपको सुनाई है, इसके बाद कैसा फील हो रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा ज्यादा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरह का जवाब मिलेगा.
0: पहले कौन सा आपने एक्सपेक्ट किया था? सवाल तो आप हमेशा ऐसे ही करती हैं कि पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा. वो मेरा काम है निकाल के देना. आपकी बेकरी पे हम आएंगे, ठीक है, पेरिस बगेट्स पे अगर हम आए हैं, पपगी आपने जो बना रखी है केक्स की और पेस्ट्रीज की, तो मुझे, मैं एक्सपेक्ट करके नहीं आऊँगा कि आप मुझे कौन सा कमाल किस्म का केक हल्की सी चाय, एक छोटी सी चाय की प्याली में, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द फूल बूटे लगे होंगे गोल्डन रंग के, नोइंग यू, ठीक है,
2: अच्छा,
0: ब्रिटिश क्रॉकरी के अंदर उसके बाद साथ एक छोटी सी चम्मच होगी जो साथ रखी होगी, और साथ पॉट होगा, लेकिन मैं आपसे उस वक्त भी कहूंगा साथ दो खजूरें चाहिए होंगी कि चीनी ले जाए यहाँ से, आप भूल चुकी होंगी, और आप कहें मैं भूल जाऊंगा ये चीनी जो आपने मेरे सामने रखी है, और आपने मुझे कहना है आप वो चीनी भूल जाए जो मैंने केक में ठूंसी है. तो ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि केक फैट फ्री या शुगर फ्री या फलां फ्री चाहिए. केक जैसा होगा वैसा खाएंगे, क्योंकि उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है मेरे लिए. लेकिन मेरा कंट्रोल उस चीनी पे ज़रूर है जो अभी मैं चम्मच से डाले जा रहा हूँ, तो उसकी जगह मैं खजूर ले लूँगा, और अगर नहीं मिला तो मीठा है केक पहले से, उसके साथ चाय पी लेंगे.
2: अच्छा, नहीं तो बिल्कुल वैसा है जैसे हॉस्पिटल में मेरी गायनी में जॉब होती थी, तो जो लेडीज डिलीवरी हो जाती थी तो फिर वो खाना ऑर्डर करती थी, तो इतना लंबा लिस्ट खाने को, और आखिर में डाइट वाला कोक चाहिए साथ में, या डाइट वाला शुगर फ्री ड्रिंक चाहिए.
0: चलें, एक विजन आई है मुझे, एक बात आ गई मेरे ज़हन से पे निकल जाए. आप चप्पल कबाब अच्छे बनाती हैं?
2: ठीक होते हैं, ज्यादा ना बाजार की तरह नहीं, जैसे होते
0: अच्छे बना लेती हैं, नरम होते हैं, खस्ता खस्ता से होते हैं, नरम नरम से होते हैं, ठीक है
2: जी,
0: विजन
2: जी.
0: में मैंने आपके कबाब भी खा लिए, चाय और ये भी, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है,
2: चाय
0: बस वो मेरा मसला है ना, अब जब मैंने देख लिया है तो अब ये बहुत जल्द हो जाएगा। आपने हमको केक के साथ चाय

0: सर्व करनी है, और हमने साथ चप्पल कबाब भी खा लिए।
1: चले इंशाल्लाह।
0: ठीक है, जो बीच में आपने पुलाव सोचा हुआ है वो भी डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं,
1: तो बहुत लंबी लिस्ट हो
0: बस
1: गई
0: इतना ही लिस्ट है।
1: ठीक है इंशाल्लाह ताला।
0: ये बस जब ये हो जाएगा फिर आपने देखना है, विजन जो होती है ना, ये इंट्यूशन जो मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे आते हैं झमाके, वो झमाके कैसे पूरे होते हैं।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि झमाका पूरा ना हो, मैं कैसे मान जाऊँ कि ये नहीं पूरा होगा। ठीक है,
1: ये भी होगा इंशाल्लाह।
0: ये न्यू जर्सी में हो रहा है कि कहाँ हो रहा है दुनिया में मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये झमाका हो गया। ठीक है,
1: अजाबल मुझे बताइए क्या हो रहा है, मुझे भी अब एक्सप्लेन करें।
0: नहीं कुछ हुआ नहीं, बस मैंने होता हुआ देखा, अब ये होना है, कब होना है, कैसे होना है, क्या होना है, कहाँ होना है, ये नहीं आया, बस ये आ गया कि मैं खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ मैं, और साथ में केक खा रहा हूँ आपका,
1: बिल्कुल सही, बहुत मजे का।
0: बस इतनी सी बात है, ये जब हो जाएगा आप कहेंगे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ।
1: बिल्कुल सही।
0: ठीक, और कोई को आज आपने बहुत अच्छा सवाल और एक बहुत ही अच्छा जो जवाब जो पैकेट आया था ना, वो जाया हो गया वीडियो के बगैर। इसीलिए
1: कोई बात
0: मैं
1: नहीं, आजाद हम फिर पूछ
0: अगली
1: लेंगे।
0: दफा पूछेंगे, कोई बात नहीं, हम भी सर पे हाथ फेर के ऐसे बैठे होंगे दोबारा से। आपको ये आवाज आ रही है ये सर पे हाथ फेरने की?
1: आजाद आप दोबारा से कहें क्या कहा आपने?
0: ये आपको सर पे हाथ फेरने की आवाज आ रही है?
1: नहीं
0: ये अभी तक ये नहीं आई आपको आवाज? मुझे यहां तक आ रही है।
1: शख्स की।
0: हाँ जी, ये सर पे हाथ फेरा जा रहा है। ये आपका गायबाना हाथ फिरवा दिया मैंने, क्योंकि हर बंदे ने जो मोहब्बत करने वाले हैं उनका मैं हाथ रखाता हूँ, पता है क्यों? एनर्जी वाला, ये गुड एनर्जी से बाल रुकने गिरना बंद हो जाएंगे।
1: फिर तो हम सारे वक्त ये करेंगे, हमारे तो सारे बाल झड़ रहे हैं।
0: ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रब ने जो इंसानों के बीच में बनाया है, ये सारी चीज़ें हमें तो पता नहीं है ना, चीज़ें माइंड ओवर मैटर में चीज़ें मिरेकुलसली कैसे ठीक हो सकती हैं। आप अपने माइंड ओवर मैटर से भी चीज़ें, क्योंकि आपने ब्रेन को जब बता दिया और इतने दिलो जान से बता दिया कि वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, तो पूरा प्लेसिबो, उसके कितने बड़े बड़े टेस्ट हो चुके हैं ना, और इसी तरह किसी इंसान के हाथ में और उसकी एनर्जी में, और उसके जब आप ये सोचते हैं, लोग आपसे नहीं, एक बंदा कह रहा होता जी मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा, वो अक्सर दुआ
1: अच्छा अजादला, ये दुआ में बहुत होता है, जैसे जब भी अजादला मैंने दुआ बहुत दिल से या बहुत ही लाइक इफ आई एम टू मच
0: कंफर्म होगी,
1: हाँ हाँ एकदम से वो काम हो जाता है।
0: इसलिए कि हमने देखिए, हम कनेक्टेड ही नहीं है ना, उस वक्त कनेक्शन बन जाता है, कनेक्शन ही सब कुछ है। इंसानों से मिलने की, उनके साथ जिंदगियां गुजारने की, पूरी पूरी जिंदगी लोग गुजार देते हैं, उनका कनेक्शन नहीं बनता। कभी कभी आप किसी इंसान से मिलते हैं, फौरन कनेक्शन बन जाता है। ये जो कनेक्शन रब ने रखा ना रूहों का, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी थी कि रूहों ने पहले आलम अरवा में एक दूसरे से मुलाकात भी रही है, उनसियत भी रही है, जैसे दुनिया में इंसानों को इंसानों से उनसियत, मोहब्बत, यू नो, खिंचाव एक दूसरे की तरफ होता है, अट्रैक्शन होती है, इसी तरह रूहों की आलम अरवा में भी होती है। तो एक इसका ये रीज़न है, दूसरा ये आपके अंदर की अच्छाई होती है जो आप किसी दूसरे बंदे में डालते हैं, आपके अंदर की सच्चाई किसी बंदे में आप डाल देते हैं, वो बंदा बेचारा शर्मिंदा ही होता रहता है कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन आप क्योंकि सच्चाई देखना चाहते हैं किसी के अंदर, आप क्योंकि अच्छाई किसी इंसान में देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आप उस इंसान को उस पेडेस्टल पे बिठा देते हैं और उसके अंदर ऐसी पावर्स पैदा हो जाती हैं। जैसे लोग पीरों के पास जाके तो उनको उतनी अकीदत से और ये वो करते हैं, तो पीर साहब अक्सर कभी कभी कुछ कहते हैं पूरा हो जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली आपके अंदर की मैनिफेस्टेशन है, जो एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है आपको, क्योंकि आप खुद अपने आप को इस तरह फील नहीं कर पा रहे होते, तो आप बीच में एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, उसके थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशन अपने पे ले आते हैं। जैसे गांव में कोई बुजुर्ग होते थे जिनसे आप प्यार से सर पे हाथ रखवाते थे, या जब वो आपको मिलते थे, या कुछ लोग होते हैं जो इन गले मिलते हैं तो इंसान को लगता है कि वो खुशी होती है, कभी कभी तो आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं आपकी, आप ऐसे भी लोग होते हैं इंसान को, जो आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, वो रो पड़ते हैं, उनको खुद नहीं पता होता क्यों, क्यों। इसका लॉजिकल रीज़न ये है, उनके दिल में बहुत सारे दुख, तकलीफें, परेशानियाँ होती हैं, और उनको जेन्युइन अफेक्शन की फीलिंग किसी से नहीं आ रही होती, ट्रूथफुलनेस कनेक्शन किसी से फीलिंग नहीं आ रही होती। तो जैसे ही वो आपसे मिलते हैं, बात सुनते हैं, या आप उनको हग करते हैं, या आप उनसे हाथ मिलाते हैं, तो वो जैसे ही उनको वो फीलिंग इतनी स्ट्रांगली उनको हिट करती है कि द वन थिंग दैट दे हैव बीन लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो जैसे ही उनको मिलती है उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, या बॉडी कांपने लग जाती है, या उनके अंदर एक यू नो चेंज, एक तो उस थोड़ी मोमेंट के लिए उनके अंदर एक चेंज सी पैदा हो जाती है, लहर सी दौड़ जाती है।
1: इवन आजादल आपके शो पे भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल वाधवा जी जब फोन करती है तो उनसे बहुत मदरली वाइब्स आती हैं, माँ वाली।
0: जेन्युइननेस जो है ना, जो आप अगर आपके अंदर ट्रूथ जिंदा है तो आपको ट्रूथ लोगों में नजर आएगा। कहते हैं ना, रब वाले वो हैं जो रब में, जो रब वालों में रब दिखता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब उनके रब की महफिल जब होती है तो लोग आपको नज़र आते हैं उस तरह के, तो वो आपको वो देखना चाहते हैं तो नज़र आते हैं। आप वो सच्चाई, अच्छाई, भलाई लोगों में जब फील करते हैं और हम में अगर ना भी हो तो हम दूसरे को के अंदर वो डाल के उसके थ्रू एनर्जी का शॉट ले रहे होते हैं एक्चुअली, क्योंकि उसके बगैर रूह सर्वाइव नहीं कर सकती। रूह बड़ा कमाल काम है, अगर आप इसको ना रब इसको कनेक्शन आप कनेक्शन में नहीं डाल के रखेंगे तो ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगी, मुरझा जाएगी आपके अंदर, क्योंकि हमारे एक्शन से ये वीक होती जाती है, झूठ से, बेईमानी से, मैनिपुलेट करने से, चलाकियाँ गेमें करने से, जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते वो मांगते रहने से, वो हासिल करने की कोशिश करने से, कानून कुदरत के ख़िलाफ़ अपनी ख्वाहिशात और अपने एक्शन रख कर

0: You have been listening to a seerah by Abdul Nasir Jangda, an instructor and director at the Kalam Institute.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum, my name is Sheikh Hafsan Ghazi.
3: My name is Julian Bond.
4: My name is Nazeel Azami.
5: My name is Nizam.
6: This is Naeem Raza.
7: My name is Ridwana Walislahan.
8: My name is Suhaib.
9: My name is Musharraf Hussain.
10: My name is Shamshid Zaman.
11: This is Raheem Jung.
12: This is Lauren Booth.
13: This is Dr. Munir.
14: My name is Fahad Matin.
15: My name is Mushtaq Boyes.
16: This is Atiq Malik.
17: My name is Imran Khan.
18: My name is Dawood Masood.
19: My name is Mood. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
13: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
15: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
17: It is related that on one occasion, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "May his nose be rubbed in the dust. May his nose be rubbed in the dust. May his nose be rubbed in the dust." His companions asked, "Who should be humiliated in such a way?" The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "That person who found his parents, one or both of them, approaching old age, but did not enter paradise by serving them." It is related that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "A person whose last words are the affirmation of testimony, 'La ilaha illallah,' 'There is no God but Allah,' shall enter paradise. Exhort your dying ones to affirm, 'La ilaha illallah.'"
19: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ayam Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
2: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest events. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
18: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
0: Okay. एक अच्छा सवाल था पिछले सेशन के बारे में, अलआलमीन के बारे में. इस बात की क्या दलील है कि अलआलमीन जहानों के लिए नहीं, लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैंने बेसिकली लोगों की बात की थी ना. कुरान ने कहा है एक और मकाम पर, तबारक अल्लज़ी नज़ला الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللہ تعالیٰ کتنا مبارک ہے وہ جس نے قرآن کو نازل کیا, فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے خبردار کرنے والا بنے. अगर आप कहें आलमीन का मतलब है आसमान, ज़मीन, पहाड़, सितारे, पहाड़ों को खबरदारी की ज़रूरत है, आसमान को खबरदार करने की ज़रूरत है, खबरदारी की इंतज़ार की ज़रूरत किसे होती है? लोगों को होती है ना। अवलम ननहका अनिल आलमीन, एक रसूल से कहा गया कुरान में, हमने आपको आलमीन से मना नहीं किया, यानी आप लोगों के चक्कर में ना पड़ा करें, उनकी बातों में अमल दखल ना करें, अपनी बात से बात रखें, अपने काम से काम रखें। वहाँ भी अलआलमीन का ज़िक्र किया कुरान में बार बार। अलआलमीन लुगत के एतबार से और कुरान के एतबार से आलमीन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसकी अहमियत फातिहा में क्या है? फातिहा की में बात हो ही नहीं रही आसमान ज़मीन की और अल्लाह ताला की मखलूक की। असल में फातिहा का बुनियादी मकसद क्या है? एक रिश्ते को कायम करना है रब और अब्द के दरमियान। जो अगर आप कहें ना लुब लुबाब क्या है फातिहा का, वो ये है रब और अब्द का रिश्ता। तो उसका हर लफ्ज़ वापस या रब की तरफ जाएगा या अब्द की तरफ जाएगा। यहाँ असमावती वल अर्द कहा होता तो अब्द की तरफ बात ना जाती, कहीं और चली जाती, लेकिन अलआलमीन किया है तो अल्लाह ताला के बंदों की तरफ वापस है ये बात। ये कुरान के अल्फाज का एक दकीक इस्तेमाल है। हर लफ्ज़ का एक मकसद होता है सूरत के अंदर। जब सूरत का मकसद समझ में आ जाए तो हर लफ्ज़ उस मकसद की तरफ आपको वापस ले जाता है और वो मकसद फिर खुद ही से वाज़े हो जाता है। अब आगे लफ्ज़ आ रहे हैं, बड़े प्यारे अल्फाज हैं अल्लाह ताला के, अर्रहमान अर्रहीम। क्या तर्जुमा करें जी अर्रहमान अर्रहीम का? उर्दू में क्या तर्जुमा होता है जी, बताएं आप मुझे। जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है, आम तर्जुमा यही है ना? ठीक है, पहले अरबी में समझ लेते हैं। रहमान और रहीम दोनों रहम से निकले हैं। अरबी के एतबार से रहमान और रहीम का जो जो असल है ना दोनों की, वो एक ही है। और वो क्या लफ्ज़ है? रहम। तो पहले रहम को समझ लें। रहम में दो मायने हैं। रब में कितने मायने थे? पांच। रहम में दो मायने हैं। एक है शदीद मोहब्बत, शदीद मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो अपनी मोहब्बत के जवाब में कोई तवक्को ना रखती हो, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल लव, बेलॉस मोहब्बत। दूसरा मायना इसका है मुकम्मल तौर पर किसी का ख्याल रखना, हर तरह से किसी का ख्याल रखा जाए तो आप उस पर रहम कर रहे हैं। रहमत का लफ्ज असल में अरबी में निकला है रहम से। रहम कहते हैं माँ के पेट को, और माँ के पेट से माँ का क्या ताल्लुक है? एक तो उसको उससे शदीद मोहब्बत है, और वो अजीब किस्म की मोहब्बत है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके पेट में, उसकी तकलीफ में इजाफा हो रहा है, उसको उल्टी आ रही हैं, उसको कमर में दर्द हो रहा है, उसको खाना हजम नहीं हो रहा, उसको सांस नहीं आ रही, उसको नींद नहीं आ रही, ना नींद में चैन, ना बैठे होने में चैन, ना लेटे होने में चैन, ना खड़े होने में चैन, और उसकी तकलीफ की एक ही वजह है, माँ की सारी तकलीफ की एक ही वजह है, क्या है? बच्चा। और जैसे जैसे वो बच्चा तकलीफ में इजाफा करता है, उल्टा माँ उससे कम मोहब्बत के बजाय क्या ज़्यादा मोहब्बत करती है। फिर आखिरी लम्हा आता है, बच्चा तकरीबन माँ को मार डालता है, तकरीबन मरे, कितना खून उस माँ ने बहाया है, और ज़िंदगी में उसका इतना खून नहीं निकला होगा जितना इस बच्चे की वजह से निकला है, और निकलने के साथ ही बदला देने के बजाय कि तूने किया ये मेरे साथ, सारी दुनिया को भूल जाती है, उसकी सारी मोहब्बत बच्चे की तरफ। और जब वो बच्चा उसके पेट में होता है तो उस बच्चे का मुकम्मल तौर पर ख्याल किया जा रहा होता है, किराया पे हुआ हुआ है, खाने का इंतज़ाम है, सफाई का इंतज़ाम है, सारा इंतज़ाम किसने किया हुआ है, सब पूरी तरह से ख्याल रखा हुआ है। रहम से दो मायने निकलते हैं, शदीद मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल, मुकम्मल तौर पर ख्याल करना। अच्छा, अब रहमत का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, भाई रहम करो, उस्ताद आपको फेल, टीचर आपको फेल करने वाला है मैट्रिक के इम्तहान में। सर जी रहम करें सर जी। रहम का क्या मतलब होता है? सजा ना दें। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सजा ना दें। सर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक और मौका दे दें। क्या मतलब है? सजा ना दें। पुलिस वाले ने रोक दिया, भाई रहम करें प्लीज़ यार, देर हो रही है जॉब को, आइंदा नहीं करूँगा। रहम हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? सजा ना दो। अरबी में रहम कैसे इस्तेमाल हो रहा है? दो चीज़ों के लिए। क्या बताया था मैंने? शदीद मोहब्बत। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अरबी जबान के अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उनको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उसके नए मायने निकल आते हैं, लेकिन हमें बहुत ही गलत किस्म का एक एतमाद आता है, नहीं कुरान के बहुत सारे अल्फाज मुझे समझ में आते हैं, कुरान में है अर रहमान रहीम, रहम करने वाला, रहम किस उर्दू, जिसकी उर्दू जबान है उसको कैसे समझ नहीं आएगा? जी ये रहम का लफ्ज़ तो है लेकिन ये उर्दू नहीं है, ये अरबी वाला रहम है, ये उर्दू वाला रहम नहीं है। और इनमें फ़र्क है कि नहीं? बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं अल्लाह को रहम करने वाला समझूँ, मैं समझूँ बस वो जो अजाब देने वाला था लेकिन देते देते रुक गया तो उसने रहम कर दिया, लेकिन माँ के रहम से अजाब का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। बल्कि इसका बुरा तर्जुमा इंग्लिश में भी बहुत आम है, मर्सी। मर्सी भी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। दी मिलिटरी शोड नो मर्सी, द जज शोड नो मर्सी, यानी फौज ने कोई रहम नहीं किया, बेरहमी से मारा, जज ने बेरहमी से फैसला किया, यानी उसने कोई लिहाज नहीं किया। लेकिन इसके मायने मनफी होने के बजाय असल में मुस्बत हैं। इसका ताल्लुक मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल से है, पहली बात। अच्छा, अब कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए रहमत वाले इस सूरत में? दो, अर्रहमान और अर्रहीम। अब इन दोनों का आप हमें समझना पड़ेगा, दो लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर बात एक ही है तो दो दफ़ा क्यों? तो इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहली बात करेंगे अर्रहमान के बारे में। रहमान जैसे लफ्ज़ अरबी में और भी हैं, आतशान, गतबान, जवान, इसको कहते हैं फ़ालान। लफ्ज़ जो एक ही तरह के होते हैं ना, उनका एक वज़न होता है, इसको वज़न कहते हैं अरबी में, गतबान, आतशान, जवान, रहमान। इन अल्फाज में तीन खसूसियात होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रहमान जैसे अल्फाज में तीन खसूसियात होती हैं। पहली खसूसियत होती है इसमें शिद्दत होती है। तो रहमान बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला, और रहम अरबी वाला रहम, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ही ज़्यादा ख्याल करने वाला, शदीद ख्याल करने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला, पहला मायना। दूसरा मायना इसका यह होता है कि ये फौरी होती है, अभी अभी, यानी यही नहीं कि वो बहुत शदीद मोहब्बत कर रहा है, बहुत शदीद ख्याल कर रहा है, अभी अभी कर रहा है, यानी कि करेगा, फिक्र ना करो अगले साल करेगा, फिक्र ना करो बहुत जल्द करेगा, नहीं अभी अभी कर रहा है, अलन फौर, अलहदूस, इसको बनाखा भी कहते हैं अलहदूस। लेकिन तीसरा मायना ज़रा पहले आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। तीसरा मायना है कि ये किसी वजह से आर्जी होता है, टेम्प्ररी होता है। जैसे आतशान कहते हैं बहुत ही शदीद प्यासा, आतशान, क्या किसी वजह से ये शदीद प्यास ख़त्म हो सकती है? पानी से, यानी वो परमानेंट नहीं है, दायमी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। जवान, शदीद भूखा, क्या किसी वजह से जुआ, भूख ख़त्म हो सकती है? खाने से। गतबान, शदीद गुस्से वाला, हो सकता है सज़ा देने से या बदला लेने से या समझाने से गुस्सा उतर रहा है। अब कह रहे रहमान, शदीद मोहब्बत करने वाला, अभी अभी करने वाला, लेकिन इसमें थोड़ी सी डराने वाली बात भी है, शायद इंसान कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिस वजह से वो इस रहमत का मुस्तहिक ना रहे। जैसे पानी प्यास को हटा देती है, खाना भूख को हटा देता है, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो रहमान से रहमत को हटा सकती है। रहमान तो वो रहेगा, मेरे लिए नहीं होगा, ये मुमकिन है। तो इसमें एक तरह से एक टेम्पररी थ्रेट आ गई, एक तरह से एक खतरा है, अंदेशा है इस लफ्ज़ के अंदर भी। एक बड़ी अजीम नेमत भी है और साथ में अंदेशा भी है। अच्छा, ये तीन बातें थी रहमान के बारे में। क्या तीन बातें थी, मुझे दोबारा याद कराइए। शिद्दत, फौरी, आर्जी। ओके, रहीम के बारे में दो बातें याद रखनी है, रहमान के बारे में तीन, रहीम के बारे में दो। ओके, वो क्या है? पहली बात कि ये हमेशा रहने वाली सिफत होती है, कोई हमेशा रहने वाली खसूसियत। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। आप कहें ये बहुत बहुत इल्म वाला शख्स है, बहुत इल्म वाला शख्स है। वो जब सो रहा है ना, वो फिर भी इल्म वाला है। जब वो जागा हुआ है, वो फिर भी इल्म वाला है। जब वो खाना खा रहा है, वो फिर भी इल्म वाला है। और जब वो अपनी इल्म की बुनियाद पर कुछ सिखा रहा है, फिर भी वो इल्म वाला है। यानी वो सिफत उसके अंदर है, चाहे उसका मुजाहरा हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो सिफत है, उसके अंदर है, वो हमेशा है। मैं कहूँ ये लड़का लंबा है, वो खुश हो या ना हो, वो गर्म हो या सर्द हो, वो या अंदर हो या बाहर हो, लंबा तो वो लंबा ही रहेगा ना, वो हमेशा के लिए लंबा है। ये परमानेंट उसकी एक क्वालिटी है, उसकी एक खसूसियत है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ फ़ईल, जैसे रहीम, शरीफ, करीम, अज़ीज़, सब में यही होता है। पहली चीज़ होती है कि ये हमेशा के लिए होने वाली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है काबिलियत या अहलियत। इसको भी समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आप कहें अपने, आप जैसे लेडीज़ को कहें मेरे शौहर जो हैं वो बहुत सब्र वाले आदमी हैं, बहुत साबिर इंसान है। अभी आप पता नहीं, हो सकता है वो भी घर पे हैं, हो सकता है किसी से उनकी बात हो रही है और इस वक्त वो बिल्कुल सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे, मुमकिन है कि नहीं? या हो सकता है अभी वो सो रहे हैं, अगर वो सो रहे हैं तो वो सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं? नहीं, उस अभी तो वो सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर उसकी काबिलियत है कि नहीं, उसका पोटेंशियल उनके अंदर है कि नहीं। यानी फ़ईल, करीम, अजीज, रहीम, इस तरह के अल्फाज होते हैं कि सलाहियत तो है, लेकिन इसका मायना ये नहीं कि उस सलाहियत का फौरी तौर पर मुजाहरा भी हो रहा है। वो इस तरह समझने कि वो अंदर है, लेकिन ये नहीं मालूम कि बाहर आ रही है कि नहीं। जिस तरह समझ लें कि गाड़ी है, उसका बहुत बहुत ही ताकतवर इंजन है, लेकिन जब वो इंजन इस्तेमाल ना भी हो रहा हो, सलाहियत तो फिर भी है ना उसके अंदर, ये है रहीम। तो तीन मायने निकले रहमान के और दो मायने निकले रहीम के। अब ये समझ लें, अगर सिर्फ अर रहमान कहा होता तो क्या मसला हो जाता? आर्जी होती, बात हमेशा के लिए ना होती। अच्छा, अगर सिर्फ अर रहीम कहा होता, एक तो शिद्दत ना होती और एक फौरी तौर पर ना होती और एक इम्कान तो होता कि सलाहियत तो है रहम की, लेकिन उसका मुजाहरा हो रहा या नहीं हो रहा, वो तो रहमान के अंदर है ना। दोनों की जरूरत थी। अब शिद्दत भी आ गई, फौरी तौर पे भी हो गई और हमेशा के लिए भी हो गई। अर रहमान अर रहीम, एक और तरह से समझ लें। फर्ज करें कि आपको बड़ी जबरदस्त भूख लगी है, आप घर पे पहुंचे, खाना तैयार है, वाइफ ने आपके लिए बहुत अच्छा आपका फेवरेट खाना बनाया हुआ है, स्मेल भी आपको आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन प्लेट खाली है टेबल के सामने, भूख आप भूखे मर रहे हैं। और वो आराम से आके आपके सामने बैठती हैं आपकी वाइफ और कहती हैं, अगले हफ्ते क्या खाएंगे? اگر وہ ایسا ظالمانہ سوال پوچھتی ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں اگلا منٹ سمجھ نہیں آ رہا اگلے ہفتے کی کیا بات کر رہی ہو بیگم، ابھی مجھے بس کھانا کھانا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو اس کو کب کی فکر ہوتی ہے، بات کی کہ ابھی کی؟ ابھی کی فکر۔ آپ کی جاب ہے یہاں پر، منتھلی پے چیک ہوتا ہے یا بائی ویکلی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چلو پہلی کو پے ملنی ہے یا تیس تاریخ کو پے ملنی ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں آپ کا باس جو ہے اس نے آپ کو چیک دینا ہے، 5 بجے آپ کو آفس سے جانا ہے، 4:50 ہو گئے ہیں، وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، فون اٹھا نہیں رہا، اور آپ کو جانا ہے، آپ کو چیک ڈپازٹ کرنا ہے، کرایہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، اور آپ کو لوگ تسلی دے رہے ہیں، نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں، باس صاحب بہت ریلائبل ہیں، ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے، آپ کو تسلی ہو جائے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمیشہ تو ہوتے ہیں، کاش کہ ابھی بھی ہو رہے ہوتے۔ جب مصیبت ہوتی ہے نا، جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ والی چیز کی سے تسلی نہیں ہوتی، آپ کو فوری طور پر تسلی چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر پہلے کیا، کیوں؟ کیونکہ الرحمن میں رحمت کب آتی ہے؟ فوری طور پہ، ابھی آ رہی ہے۔ اچھا وہ مثال دی تھی آپ کو کھانے والی، بھوکے بیٹھے تھے، اب آپ نے کھا لیجیے بریانی، پیٹ بھر گیا، پھر آپ کہو گے ہاں بیگم وہ اگلے ہفتے کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی آپ، اب کیسے دماغ کھل گیا؟ کیونکہ انسان کی نیچر میں کیا ہے، جب ابھی والا مسئلہ حل ہو جائے تو دماغ کہاں جاتا ہے؟ آگے کے بارے میں، یہی ہوتا ہے نا، ابھی کا مسئلہ حل، ابھی اگر ابھی کا مسئلہ ہے تو آگے کچھ سمجھ نہیں آتی، اگر ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا، ایک دفعہ ادھر کی تسلی ہو گئی تو پھر آگے کی۔ اسی لیے جو لوگ فائنینشلی مشکل میں ہوتے ہیں وہ آگے کی نہیں سوچ سکتے، اور جو لوگ فائنینشلی ویل آف ہوتے ہیں وہ تھراپسٹ کے پاس بہت جاتے ہیں، کیونکہ ان کو انگزائٹی ہوتی ہے کس چیز کی؟ فیوچر کی، بچوں کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، ابھی کی تو کوئی فکر ہے نہیں، کھانا ہے، چھت ہے، سب کچھ ہے، تو اب یہاں کا تو مسئلہ حل ہو گیا، آپ آگے کی سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا، ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا دے دیا؟ کیا بات ہے، الرحمن الرحیم، اس کی ترتیب بھی کیا عجیب ترتیب ہے، اس کو آپ ادھر سے ادھر کرو بات وہ نہیں رہے گی، وہ اپنی جگہ اس کا ایک ایک مقام ہے۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب تفسیر ہے اس کا، ان دو الفاظ کی، کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے، کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں۔ یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی، کیوں؟ الرحمن میں کیا تھا، ہمیشہ کے لیے کہ عارضی؟ دنیا بھی تو عارضی ہے نا، پر اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے، صرف کچھ لوگوں پر رحم کرتا ہے، سب پہ کرتا ہے، لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو، اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم۔ عجیب، آپ نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے، قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے، کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے، نہیں؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، الرحمن۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا، بہت شدید رحمت، آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے، اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی، الرحمن علم القرآن، جس نے اتنی شدید محبت کی، اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا، اس لیے قرآن سکھایا۔ ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو، اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا؟ किस मोहब्बत से सिखाया गया था, क्या लिहाज करके हमारा सिखाया गया था, हमने क्या बना दिया कुरान को, सुभान अल्लाह। तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बाद।
3: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan.
0: Do lafz jo hain wo ek dusre se bahut qareeb hain, ek rab aur ek malik, aur un dono ke darmiyan do alfaz hain.

तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बारे में। अच्छा, लेकिन एक कन्फ्यूजन भी आ गई, वो भी समझ लें। रब में सरबराही के, सरदारी के मायने थे कि नहीं थे ना? मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना, तो आपकी दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है को एक एक चीज चेक कर रहा था, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहे हैं। एक मैनेजर होता है कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं जुम्मे को चेक कर लूंगा, खुली छुट्टी, पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम कहो मैं घर से काम कर लूँ, काम कर लो, जहां से भी करो, दरख्त से लटक के कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम काम कर लो, जुम्मे को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बॉस होते हैं कि नहीं? एक होते हैं जो हर चीज को मैनेज कर रहा है, और दूसरा खुली आजादी देके बस मुझे रिजल्ट्स दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक्तदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है वो किसी भी लम्हे पूछ लें। लेकिन दुनिया की जिंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की? नमाज पढ़नी है, पांच वक्त पढ़ना, नहीं पढ़नी सोते रहो, वैसे पढ़नी चाहिए, मैं उठाऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी जबान पे, बोलना बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी, ऐसा ही है ना। उसकी मैं आपको इंसानी मिसाल देता हूं, हमारे यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब गुलामी नहीं रही उस तरह की, लेकिन मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, आप फर्ज करें कि आप मेरे पास आए, कहते हैं आज के बाद आप मेरे गुलाम हैं, मैं कहता हूं चलो ठीक है, गुलामी कबूल कर लीजिए आपकी, क्या करूं जी आपके गुलाम होने के नाते, बस ये एक मैंने एक दायरा बनाया, इस दायरे के अंदर रहना, बस बाकी कुछ नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। कहो जी तो बड़ा आसान काम है, अब मैं दायरे के अंदर जिंदगी गुजार रहा हूं और आप मुझे दूर से देख रहे हो, एक दिन मैं जरा फिसल के गिर गया दायरे के उस तरफ, जब मैं दायरे के उस तरफ गिरा मेरी नजर फौरन कहां गई, मालिक की तरफ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से कोने पे फिसल गया था, अब नहीं होगा अहमद, मैं कुछ भी नहीं कहा, ऐसे बस एक लफ्ज नहीं कहा मैंने, मेरे जहन में आया माशाल्लाह बॉस तो वैसे काफी हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, इतनी को सजा भी नहीं मिली। तो दो तीन दिन बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं जरा एक और दफा गलती से करके देखूं क्या होता है, तो मैं गिरा, फौरन मैंने देखा जो मेरे मालिक हैं वो बैठे हैं चेयर पे, उठे भी नहीं चेयर से, और फिर मैं कहूं सॉरी सॉरी, वो कहते अच्छा जी ये तो इतना कोई सीरियस नहीं है जितना मैं पहले समझ रहा था, मैं पहले बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस कानून को तोड़ूंगा तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ना, कोई साथ में इसके बारे में मुआवजा होगा, कोई सवाल जवाब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पाँव उधर एक पाँव इधर, एक पाँव उधर एक पाँव इधर, और फिर मैं बॉस को भी, वो भी मुझे ऐसे, और फिर कुछ अर्से बाद में दोनों पैर इस तरफ, और घूम फिर रहा, और बॉस से भी, बॉस कह रहे लंच तैयार है, यानी ताल्लुकात में कोई वो अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी ख्याल रखे हुए है, और मैं लाइन के बाहर हूं लेकिन कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं 5-6 साल इस तरह गुजार दिए इसी तरह से, इस दौरान मेरे साथ वो कुछ ज्यादा रियायत नहीं कर रहा। अब वो जो ज्यादा रियायत करता है ना कोई बॉस, तो उससे एम्प्लॉयज का क्या होता है पता है? ओए होए होए, मेरी एक बहुत पुराने ज़माने में मेरी एक जॉब थी, मैं प्री स्कूल टीचर था, किंडरगार्टन एंड प्री स्कूल, और फिर मुझे वहाँ से जब मैं फारिग हुआ तो मुझे एक जॉब मिली, मैं तीसरी जमात को मैथ पढ़ाता था, मैथमेटिक्स, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था सारी टीचर्स जो थीं वो सीनियर थीं, और बहुत ही यानी बच्चे देख के उनको, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दादी याद आ जाए, दादी तो नाइस होती हैं, दादी नानी,
उनको देख के क़यामत याद आ जाती थी। मैं गया क्लास में, मैंने कहा मैंने इन बच्चों से दोस्ती करनी है, इन बच्चों को मैंने डराना नहीं है। मैं गया, मैं लतीफ़े सुना रहा हूँ, मैं टेबल पे खड़ा होके ट्रिक्स कर रहा हूँ।

दूसरा एक एक दूसरे से कहता है डू द पेंसिल डू द पेंसिल, वो पेंसिल वाली चीज करे दोबारा। मैंने कहा नहीं ओपन पेज फाइव। और मुझे अभी तक याद है एक बच्चा वो दीवार पीछे क्लास की दीवार पे गया, वहां पे वो यहां खड़ा अपना नाम लिख रहा है दीवार पे, और वो लिख रहा है और मुझे देख रहा है, और उसका दोस्त उससे कह रहा है यार टीचर तुझे देख रहा है, तो कहता है हाँ लेकिन ये अच्छे हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ रहमत की जा रही है, आपका बहुत ख्याल बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है आपके साथ, और उस मोहब्बत पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, आप नाफरमानी करें या फरमा बरदारी करें आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है, तो उसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो नाइस ही नाइस है, ये तो है ही अच्छे नरम दिल के हैं। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपना रब जो तुझसे इतना तुझ पर करम करता है किस चीज ने तुझे धोखा दे दिया, क्या उसके करण ने तो तुझे धोखा नहीं दे दिया, धोखे में तो नहीं पड़ गया। तो जब कहा ना अर्रहमान अर्रहीम तो ये खतरनाक बात कह दी, रब तो वो है, रब में तो अथॉरिटी आ गई ना, इक्तदार आ गया, और उसके बाद फौरन तसली दे दी किस किस अल्फाज किन अल्फाज से, अर्रहमान अर्रहीम। अब कोई अल्लाह ताला की हदूद से बाहर जाके उसने एक लिकर स्टोर खोल लिया, उसने कोई और हराम बिजनेस शुरू कर दिया और हरकतें शुरू कर दी, और उसको तुम कहो ये अल्लाह की हदूद से बाहर है यार, वापस आ जाओ हदूद के अंदर। यार तुझे नहीं पता एक लेक्चर मैंने सुना था अर्रहमान अर्रहीम, पता है कितनी चीज़ें, तीन चीज़ें होती हैं अर्रहमान के अंदर और दो होती हैं अर्रहीम के अंदर, छुट्टी है ना। अर्रहमान अर्रहीम में तो फिर बिगाड़ का सारा सामान, इन दो अल्फाज में जितनी रहमत है उतना ही बिगाड़ का सामान भी है। लेकिन फातिहा में जो बुनियादी रिश्ता है ना मेरा अल्लाह ताला के साथ, उसको सही यानी मीज़ान पर कायम किया गया है, तो फौरन अर्रहमान अर्रहीम के बाद क्या बात की, मालिक यौमिद्दीन, फौरन सीधा हो गया बंदा। मैंने कहा था ना मैं अपने मालिक से फेंस के बाहर में 5 साल इसी तरह छुट्टी गुजारी, 5 साल बाद मालिक मुझे बुलाता है कहता है ये जो तुम बाहर खड़े हुए हो ना, हाँ मुझे पता है वो एक दफ़ा मैं आपने कहा था, लेकिन याद है मुझे वो भी क्या दिन थे, कहते मैंने वैसे उस दिन से रिकॉर्ड रखा हुआ है कि तुम कितनी दफ़ा बाहर गए थे, ये रिकॉर्ड है तुम्हारा, और आज तुम्हें उस सब की इकट्ठी सज़ा मिलेगी। अब बात समझ में आ रही है मालिक यौमिद्दीन क्या होता है। इंसान समझता है कि उसकी खुली छुट्टी है, लेकिन बाद में आगे जाके फौरन पकड़ हो रही है ना। अब ये एक अजीब अजीब सूरत है अल्लाह ताला की, इसके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। आज सेशन होने ख़त्म होने से पहले दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा, मालिक यौमिद्दीन के बारे में और अभी जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में। दो लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं इस सूरत में, एक रब और एक मालिक है ना, एक रब और एक मालिक, और उन दोनों के दरमियान दो अल्फाज हैं, एक तरफ रब है एक तरफ मालिक है, और दरमियान में दो कौन से लफ्ज हैं, अर्रहमान अर्रहीम। अब उन दोनों लफ्ज के बारे में सोचें, उनमें से एक आर्जी और एक मुस्तकिल है, आर्जी वाला कौन सा था, अर्रहमान, और मुस्तकिल वाला कौन सा है। अब ये अजीब कलाम देखें अल्लाह का, रब्बिल आलमीन इस जिंदगी के बारे में थी वो बात या अगली जिंदगी के बारे में, रब्बिल आलमीन इस जिंदगी के बारे में, और उससे करीब तीन तरीन लफ्ज है अर्रहमान जो इस जिंदगी के बारे में है। मालिक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है किस किस जिंदगी के बारे में, और उसके करीब तरीन लफ्ज कौन सा है, अर्रहीम जो हमेशा वाली रहमत, उससे करीब तरीन। क्या अजीब कलाम है, क्या तरतीब है इस कलाम की, रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक। अच्छा शुरू रुबूबियत से रब, इंतहा मालिक से, और दरमियान में दोनों के क्या, रहमत यानी

0: ये कभी मत समझना कि वो तुम्हारा, ये कभी मत भूलना कि वो तुम्हारा रब है और तुम्हारा मालिक है। लेकिन इन दोनों अल्फाज से डर लगने लगता है, लेकिन जब डर न लगने लगे तो उस जितना गहराई में इस रिश्ते के दरमियान में पहुंचोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? रहमत मिलेगी। इसके बाहर बाहर अथॉरिटी है और अंदर अंदर मोहब्बत है, रब मालिक रहमा। अजीब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब जल्दी से इन तीन आयात को मैं कम से कम आज मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। तो मालिक यौमिद्दीन के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ, ये बहुत आसान है समझना। दीन से शुरू बात करते हैं। दीन अरबी में कहते हैं फैसले को, फैसले को। दीन अरबी में ऑल्सो उसको भी कहते हैं किसी से आपका मामला हो रहा हो ना और उस मामले को मुकम्मल किया जाए, मेरा मामला तय हो गया, उसको भी दीन कहा जाता है। कमाया था दीन तो दान, जैसे तुम दूसरे से मामला करोगे वैसा तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा, ये अरबी की कहावत है। अच्छा, अगर शदीद मोहब्बत का जिक्र है अर रहमान अर रहीम में तो उसका मुतजाद क्या होना चाहिए? नफरत, अजाब। अगर एक तरफ मोहब्बत है तो उसका मुतजाद अजाब होना चाहिए, लेकिन उसके मुतजाद में दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। और दीन क्या है? इंसाफ, फैसला। और फैसले से क्या, किस चीज की तरफ इशारा हो रहा है? इंसाफ की तरफ। तो अगर आप इस तरह समझ लें कि जो मोहब्बत है वो पॉजिटिव है, मुस्बत है, और नफरत क्या है? मनफी है, तो अदल कहां पे होगा, इंसाफ कहां पे होगा? सिफर, ना मोहब्बत ना नफरत। अल्लाह ताला ने इतनी, उसकी इतनी अजीम रहमत है, उसने नफरत का, अजाब का, गुस्से का जिक्र भी नहीं किया, मनफी का जिक्र भी नहीं किया। अगर ये पूरा चार्ट होता ना तो एक तरफ पॉजिटिव में अर्रहमान अर्रहीम होता और दूसरी तरफ अजीज उल इंतकाम होता, अल मुअद्दिब कुछ होता, लेकिन वहां भी सिफर तक लेके मनफी तक नहीं लेके गए, सिर्फ दीन की बात की, यानी इंसाफ की बात की। और ये क्योंकि, क्योंकि असल चीज जिससे हमें डरना है ना वो अजाब नहीं है। फातिहा के मुताबिक असल चीज जिससे डराया जा रहा है वो इंसाफ है, वो इंसाफ है। इन्नहु मन सुइला यौमल क़ियामति फ़क़द हलक, एक रिवायत में आता है जिससे उस दिन एक सवाल भी पूछ लिया गया वो तो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला की रहमत उस दिन पता है क्या है? कुछ लोग होंगे जिनकी किताब उनके सीधे हाथ में होगी, अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल करें। अच्छा, जिसकी किताब उसकी सीधे हाथ में है ना, उसके बारे में क्या कहा है कि वो सिक्योरिटी गेट पे पहुंचता है और वहां अल्लाह ताला ने कहा है फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसके साथ आसान हिसाब किया जाएगा। आसान हिसाब से मुराद रिवायात से मिलता है कि फरिश्ते किताब खोलेंगे भी नहीं, गुजरने देंगे, जी हमें बताया आप जाएं, क्योंकि आपके कौन से हाथ में किताब है? अब आप नर्वस, आपके हाथ में तो किताब है लेकिन आप कहें अगर आप ये पेज 130 पे जाएं तो उसमें एक हज है, वो ज़रूर देख लेना। जैसे आपका पेपर होता है ना, उसमें आपने बड़े उल्टे सीधे जवाब दिए होते हैं लेकिन एक सही जवाब दिया होता है तो उसको आप पहले दिखाते हो टीचर को, ये वाला ये चेक करने ज़रा ये वाला। अच्छा, ये अगर पेज 503 पे जाएं तो वहाँ एक शायद एक लैलतुल क़द्र थी मेरा ख्याल है उसमें एक, तो आप, लेकिन वो फरिश्ते क्या कह रहे हैं? आप जाओ, आप क्या कह रहे हैं, निकलो, कोई बात नहीं। अजीब सा। दूसरी तरफ कहा है किसी की किताब उन लोगों के उल्टे हाथ में होगी, अल्लाह हमें उनमें से ना करे, और उनकी पीठ के पीछे होगी, ऐसे होगी किताब, ना सिर्फ उल्टे हाथ में, पीछे। अब वो खुद भी नहीं देख सकता कितनी खराब है, उसको पता है खराब है, उसको ये भी नहीं पता है कितनी खराब है। अब वो भी आ रहा है सामने और उससे पूछा जा रहा है। अब यहां पर जब अद्दीन कहा है ना, तो इससे हमें इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि अल्लाह ताला उस दिन का भी मालिक है, जिस तरह वो रब इस दुनिया में है, उस दिन वो रब नहीं होगा, उस दिन वो क्या होगा? मालिक। तो क्या निकल गया रब के मायने में से, क्या निकाल लिया गया? तोहफे देने वाला, ख्याल करने वाला, कायम रखने वाला, जो उसके नरम नरम मानी थे ना वो सारे निकल गए और क्या रह गया? मालिक। उस दिन तो अथॉरिटी होगी, या तो रहमत होगी या फिर ये। और अगर आप इस तरह भी समझ लें कि रब के अंदर दो पहलू हैं, एक मोहब्बत वाला पहलू भी है रब के अंदर और एक इक्तदार वाला भी है, तो रब के अंदर वो जो मोहब्बत वाला पहलू है ना वो अर्रहमान अर्रहीम में सामने आ गया, और रब के अंदर जो इक्तदार वाला पहलू है वो कहाँ, मालिक यौमिद्दीन में सामने आ गया। इन तीनों अल्फाज का आपस में एक जोड़ बन गया। आखिरी चीज है, ओके, दो चीजें, यौम, यौम किसे कहते हैं? ओके, अल्लाह ताला ने अपने बारे में ऐसी बात की है जो कभी कोई अपने बारे में या किसी और के बारे में कह ही नहीं सकता। फरमाते हैं दिन का मालिक। देखें, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हो, किसी बकरी के मालिक हो सकते हो, किसी कंप्यूटर के मालिक हो सकते हो, लेकिन आप एक मिनट के मालिक नहीं हो सकते, आप एक सेकंड के मालिक नहीं हो सकते। वक्त की मिल्कियत मुमकिन नहीं है। एक चीज है जो आप जो भी कर लो, जितना भी पैसा आ जाए, जितनी भी जितना भी इक्तदार आ जाए, एक चीज है जो आप कभी भी ओन नहीं कर सकते, वो क्या है? वक्त। और वहां उसने उस एक चीज की मिल्कियत अपने सामने साबित की है, मालिकी यौम। और इससे बहुत अजीम बात सामने आ गई। अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर एक थैला हो और मैं कहूँ ये थैला मेरा है, ये थैला मेरा है, या ये बैग मेरा है, तो उस बैग के अंदर जो कुछ भी है वो भी किसका है? मेरा ही हुआ ना। अगर अल्लाह उस दिन का मालिक है तो क्या बात निकली? उस दिन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस सब का वो मालिक है। उस सब को एक्सप्लेन करने में बाकी कुरान है, लेकिन वो पूरी बात एक ही मुहावरे में शामिल हो गई जब कहा मालिकी यौम, मालिकी यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। यानी बहुत थोड़े अल्फाज हैं फातिहा में, लेकिन पूरी पूरी कायनात उनके अंदर मुजमर है। आखिरी बात इसके मालिक के बारे में समझ लें। मालिक असल में दो किराआत हैं हमारे नबी से मरवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक भी पढ़ा करते थे और मलिक भी पढ़ा करते थे। मालिक और क्या? मलिक। मालिक के मायने उर्दू में जैसे हैं वैसे अरबी में है। मालिक गाड़ी का मालिक, बकरी का मालिक, ठीक है, मालिक। मलिक किसे कहते हैं बताएं? बादशाह को, बादशाह को। तो एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ बादशाह, और दोनों के मायने यहां जरूरी हैं। समझ लें क्यों। बादशाह जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस मेरे ये जूते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मैं इस जूते का बादशाह हूँ। मैं क्या कहूँगा? मैं जूते का मालिक हूँ। मैं घर का बादशाह हूँ या मालिक हूँ? मालिक। मैं कंप्यूटर का बादशाह हूँ, मालिक हूँ? मालिक। लेकिन अगर कोई किसी के पास पूरा आइलैंड हो या पूरा मुल्क हो, वो कहे मैं इस आइलैंड का क्या हूँ, क्या बात सामने आ रही है? बादशाह होते हैं बड़ी बड़ी सल्तनत के, और मालिक होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। जो बमुकाबिल छोटी चीज़ होती है उसके लिए मालिक होता है, जो बड़ी होती है उसके लिए क्या होता है? बादशाह। अब एक और फर्क भी समझ लें। अगर वो किसी मुल्क का बादशाह है, क्या तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो उसकी सल्तनत में हो रही हैं उसमें उसकी नज़र है? हर बात पे, हर काम पे, हर किसी के सोने पे, हर किसी के उठने पे, क्या वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है? आपकी कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी है, आपके 50 मुलाजिम हैं, क्या आप हर मुलाजिम की हर परफॉर्मेंस को, उसकी हर बात को, उसके हर एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? जितना आपका कंट्रोल बढ़ता है ना, जितनी सल्तनत बढ़ती है, उतना आपका छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल कम होता चला जाता है। ऐसा ही है ना, आपको किसी और को मैनेजमेंट देनी पड़ती है, छोटे काम मैं नहीं कर सकता, अब मेरे पास बड़े काम आ गए हैं, अब मैं छोटी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। मालिक का क्या है? अगर मैं कंप्यूटर का मालिक हूँ तो उसकी रिपेयर मैं खुद करूँगा, मैं घर का मालिक हूँ तो उसका दरवाज़ा मैं खुद फिक्स करूँगा, अगर मैं एक मुल्क का बादशाह हूँ दरवाज़ा मैं खुद फिक्स नहीं करूँगा, मुझे तो पता मेरा दरवाज़ा ख़राब है। बड़ी चीज़ों के लिए बादशाह, छोटी चीज़ों के लिए क्या? मालिक। अब क़यामत के दिन में दो तरह के काम हो रहे हैं। قیامت کے دن میں سورج اور چاند ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہیں، قیامت کے دن میں دنیا پھیلائی جا رہی ہے، قیامت کے دن میں ساری انسانیت کو قبروں سے نکالا جا رہا ہے، قیامت کے دن میں آسمان پھٹ کے کھول رہا ہے، قیامت کے دن میں سارے فرشتے اتر رہے ہیں، یہ تو بادشاہ کا کام ہے، یہ بڑا کام ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایک ایک عمل کا جائزہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ مالک کا کام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دو طرح پڑھی، کیونکہ اس دن کچھ چیزیں مالک سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں ملک سے متعلق ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور دونوں کو شامل کر دیا مالکیوں میں دین میں۔ آپ کے جانے سے پہلے ہم نے تین آیات کا مطالعہ کیا ہے اس وقت، تھوڑا سا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین۔ میرے نزدیک قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع تعارف، کوئی اگر کوئی غیر مسلم ہو وہ پوچھے تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہارا اسلام کا خدا کون ہے، اس کی سب سے جامع تعریف بس یہ تین آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پہلی چیز جو میں جان جو وہ خدا خود چاہتا ہے کہ تم جانو، جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ حمد کا مستحق ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس سے رشتہ تمہارا رب کا ہے، اور صرف تمہارا ہی نہیں تمام سوسائٹیز کا، تمام انسانیت کا، ازل سے ابد تک، العالمین۔ اور اس کو تم سے ایسی شدید محبت ہے کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے کہ وہ محبت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے رہے، الرحیم۔ لیکن اگر تم نے اس محبت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ جان لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں ایک دن آ رہا ہے، ایک کل آنے والا ہے جس میں پھر پورا پورا حساب لیا جائے گا، اور ایک بڑی بڑی چیزیں ہوں گی اور چھوٹی چھوٹی چیز تک حساب لیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، ایک پوری بیلنسڈ پکچر آ گئی میرے سامنے، ایک پوری تصویر آ گئی، جس میں نہ اس طرف میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈروں، یا اس طرف میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں اور مجھے کوئی فکر ہی نہ رہے، دونوں کے درمیان میں ایک مکمل بیلنس، یہ آ گیا، یہ بات آ گئی ابھی تک فاتحہ میں۔ اور اس کے بعد جہاں سے ہم کل بات شروع کریں گے انشاءاللہ، وہ ہوگی کہ اگر یہ کوئی بات سن لے تو وہ کس نتیجے پہ پہنچے گا، یعنی اس ساری بات کا، ٹھیک ہے آپ نے یہ باتیں سیکھ لی اللہ کے بارے میں، سو واٹ، پھر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اگلی آیت اصل میں ان تین آیات کا نتیجہ ہے، پھر جو ان تین باتوں کو، ان تین آیات کو سمجھ لے، وہ کہاں تک پہنچے گا، کس فیصلے تک پہنچے گا، اور خود ہی سے پہنچے گا۔ اس سے کہا نہیں جائے گا عبادت کرو اس لیے عبادت کرو، یہ نہیں کہا گیا، کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی، صرف تیری ہی عبادت کرنے کو تیار ہیں، کرنے آئے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ یہاں سے آگے جو اصل معجزات ہیں اس سورت کے، وہ آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ، اس پہ کل ملاقات ہوگی۔
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.
0: جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا، وعدے کیا کر رہا تھا، اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا، کیا چاہیے تمہیں؟
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001237474 court.org.uk।
2: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.